नहीं मरना गवाना प्यार मेरा, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा।